0: the missing MPs who have not attended the meeting at his residence face to face. What MPs are telling and what sources from the party are telling us is that they were trying to meet Uddhav Thackeray at several instances before, but Uddhav, due to his non-availability or due to his busy schedule, he used to shut them off. So now they have reached a point where MP have made up their minds, but still Eknath Shinde, Shiv Sena, wants the number which is 2/3 of the total number of MPs which Uddhav has, which comes up to 6 to 7. But till now, only 5 MPs are in touch with Eknath Shinde, and hence they are waiting for more to join in and jump the ship. So the MPs are in double mind, the ball is in their court. But at the same time, Uddhav has made his stance very much clear, saying that those whoever wants to go and lead the party can go, and they are going to, you know, reprieve for that, because those MPs who have left Balasaheb Thackeray Shiv Sena has obviously faced the music, and they have lost in the upcoming elections. So he has warned all the MPs who are missing from the meeting, and he has also given them an ultimatum of 48 hours to come and meet them face to face and, you know, to clear the stance and made it public.
1: All right, Ritvik, thank you for those details. So Uddhav Thackeray has given an ultimatum to the MPs who did not turn up for the meeting at Matoshri, that doors are open for whosoever who wants to leave. Meanwhile, my colleague Piyush Mishra spoke with Sanjay Raut. Let's listen in.
2: बातचीत करने के लिए हैं यूबीटी शिवसेना सांसद संजय राउत जी. संजय जी, आपको भी लग रहा है कहीं ना कहीं जो स्थिति पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के साथ हुई, वैसी शिवसेना के साथ यूपीटी के साथ
3: हम पहले जा चुके हैं. वो जो स्थिति है पश्चिम बंगाल वाली, तभी हमारे जो मित्र है तृणमूल कांग्रेस के सब और हम पर हंसते थे और बोलते थे, अरे कैसा भाग के गए तुम्हारे एमपी मिले, तुमने रोका नहीं क्या, तुमने रोका क्या. जब मिलते थे तो हमको बहुत मार्गदर्शन कर देते, अरे कैसा हो गया, इतने ढीले कैसे छोड़ दिए, कैसे भाग गए, तुम लोग क्या करते थे. अभी मैं पूछता हूं, तुम लोग क्या करते थे, एक महीने में चले गए. देखो, ये जो सरकार है केंद्र में 12 साल से जो चल रही है, उसका एक ही काम है, एक ही काम है. ये उनकी खुद की व्यक्तिगत पार्टी की ताकत नहीं है, ईडी सीबीआई की ताकत है. हमारे पास आएगी सरकार, हमारे पास ईडी सीबीआई होगी, तो ये लोग रहेंगे, उनकी पार्टी रहेगी, उनकी भी पार्टी नहीं रहेंगी. हमारे पार्टी के, कांग्रेस के, एनसीपी के, तृणमूल के सभी डरपोक लोग बीजेपी में गए हैं, भगोड़े. वो वहां से भी भागेंगे सरकार बदलेगी तो. कौन सा ऑपरेशन ये लोग कर, ऑपरेशन ऐसा नहीं होता है. हमने बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन किए हैं.
2: आपको लग रहा है सभी सांसद इस वक्त शिवसेना के सब साथ में है आपकी जो
3: कसम तो खाई है. भगवान की कसम खाई है, साईं बाबा की कसम खाई है, बच्चों की कसम खाई है, माँ की कसम खाई है, विश्वास रखना चाहिए.
2: एमसी के एमपी गए हैं टूट, उनको आप क्या कहना चाहेंगे, जो अभी अलग गुट बना रहे हैं, एनसीपी करके पार्टी है, उनको क्या क्या कहना चाहेंगे आप.
3: ये थर्ड क्लास राजनीति है टीएमसी वालों की. ममता दीदी की छोड़कर किसी पार्टी में उनका विलय हो गया किसी को पता नहीं. नेशनलिस्ट कौन सा पार्टी.
1: So that was Sena UBT MP Sanjay Raut essentially slamming the BJP for this alleged split, and he's saying that the ED and the central agencies, the pressure from those agencies is what is driving these MPs away from the party. With that, we're now slipping into a very short break, but do stay with us, as on the other side, we'll get you more on the Bidadi project, which is the dream project of Karnataka Chief Minister D.K. Shivakumar, which is now being slammed by his own minister. Stay with us for more on this.

0: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
2: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
3: सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने.
4: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ.
5: सोच बदलो और बैंक भी.
6: कैन इंडिया कट थ्रू द रेड टेप? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज पुशिंग टू डिसमेंटल द कंप्लायंस राज. दिस वीक इंडिया टुडे ब्रिंग्स यू द इनसाइड स्टोरी बिहाइंड मिशन डीरेगुलेशन. रीड इट इन द लेटेस्ट इश्यू ऑफ इंडिया टुडे, मेकिंग सेंस ऑफ इंडिया. Now available for speed delivery on Amazon and Blinkit. Subscribe now at subscriptions.intoday.in.

0: watching India Today Television. India Today Television studio is safe from dengue, protected by All Out.
1: Welcome back. Now, the big story that's coming in on the political front is not from the TMC, but a similar one emerging in the Sena. Again, the Shiv Sena or the UBT Sena that is now witnessing a certain, whether you call it a rebellion within the UBT or the ones turning into what we say a void possibly in the UBT. Now, here's what's happening. Operation Tiger in Maharashtra. Remember that in TMC, 20 rebel MPs merged with the NCPI. So how is Maharashtra here in the playbook? Union Minister Pratap Rao Jadhav openly inviting UBT Sena MPs to defect into the Shiv Sena fold led by Eknath Shinde. Now, Uddhav Thackeray has shrugged off threats. But Shiv Sena is claiming that around 7 UBT Sena MPs are in touch with them. That Operation Tiger is in the final stage. Before the monsoon session, all of it will be clear and most of these MPs will jump ship to the Shiv Sena, which is led by Eknath Shinde. So it's not really yet over. The troubles are still on for Uddhav Sena. Now, what we do know is from our sources that Uddhav Thackeray has basically said the door is open. The one who needs to leave can do so anytime. But does that mean that he's not able to keep the flock together? Or perhaps there is another strategy at play? Here's what we are hearing from Maharashtra.
2: ऐसा है कि ऑपरेशन टाइगर के मामले में जो सात सांसदों के साथ में हमारी चर्चा अंतिम क्षण में आ चुकी है जैसा हम लोग ऑपरेशन करने किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो पहले इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और वो इन्वेस्टिगेशन सारे रिपोर्ट्स आ चुकी है अभी केवल ये डॉक्टर का अंतिम ऑपरेशन का जो दिन होता है ऑपरेशन की अपॉइंटमेंट दिन आना है ऑपरेशन के दिन आ जाएगा उस दिन ये ऑपरेशन हो जाएगा
3: सर ये जो चल रहा है कुछ खबरें हैं कि कुछ शिवसेना यूपीटी के सांसद आपके साथ मुलाकात किए क्या स्थिति है सर अभी
4: अरे ये हमारे दोस्त है ये पहले से हम एक पार्टी में काम करे हुआ है
3: जी जी
4: तो मिलना जुलना तो चालू ही रहता है ना हमारा
3: जी जी लेकिन सर ऐसा है क्या कुछ सांसद उधर के आ रहे हैं आपके पास यूपीटी वाले
4: अभी तो वो लोग ही बताएंगे ना ये इतना है कि बाकी बहुत सारे सांसद और सभी विधायक बहुत सारे
3: जी
4: वो पार्टी नेता के ऊपर बहुत नाराज है
3: जी
4: इतना मुझे मालूम है बाकी वो क्या कर रहे हैं नहीं मुझे मालूम
3: लेकिन क्या अगर वो आते हैं आपसे बात करते हैं वो ज्वाइन करते हैं तो वेलकम है सर वो कि वो ज्वाइन करें
4: जो आएगा उसके लिए तो कोई पार्टी में हमारे पास तो सभी का वेलकम है
3: जी
4: जो आएंगे उनका हम स्वागत ही करेंगे मान सम्मान भी करेंगे
3: जी जी जी तो लेकिन सर जो मुलाकात हुई आपकी क्या कुछ बातचीत हुई क्या कि वो आना चाहते हैं उन्होंने कुछ इच्छा जाहिर की उन्होंने
4: नहीं वैसे कुछ मैंने बातचीत नहीं की
3: जी
4: लेकिन हमारे जो नेता लोग हैं हमारे शिंदे साहब है उनके संपर्क में कुछ लोग हैं
3: अच्छा
4: और वो गुट के बहुत सारे लोग उनके नेताओं के ऊपर नाराज हैं
3: लेकिन किस बात की नाराजगी सर कुछ
4: अभी जो नेता मिलते नहीं अच्छे ढंग से बात करते नहीं सम्मान देते नहीं
3: जी
4: कुछ विधायक के प्रॉब्लम रहे तो उसको विधायक हो या एमपी के तो उनके ऊपर ध्यान देते नहीं बस ऐसी बात है बाकी क्या बहुत सारे लोगों में जैसा टीएमसी के लोगों में असंतोष था
3: जी
4: बस उसी तरह ही उबाटा समझ लो महाराष्ट्र में
3: अच्छा जैसे टीएमसी के लोगों के अंदर असंतोष था वैसे ही उबाटा में भी असंतुष्ट है
4: उबाटा में तो पहले ही था करके तो हम लोग पहले ही बाहर निकल गए थे ना
3: जी जी जी
4: आज जो कुछ बाकी कुछ बचे थे
3: जी
4: अब उनके भी ध्यान में आ गया है कि भाई हमने गलती कर गई इधर रुक के
3: जी
4: और ये लोग तो मानते हैं ना कि सही शिवसेना सही बाला साहब के विचारधारा हम ही चला रहे हैं
3: जी
4: अभी उद्धव जी ठाकरे वो आदित्य ठाकरे तो सेकुलर बन गए
3: जी जी
4: हाँ
3: तो जो बाकी रुक गए वो भी जल्द आ जाएंगे ऐसा है सर
4: वो भी नाराज है वही ना
3: नाराज है वो जी
5: आपको भी लग रहा है कहीं ना कहीं जो स्थिति पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के साथ हुई वैसी शिवसेना के साथ
6: हम पहले जा चुके हैं वो जो स्थिति है पश्चिम बंगाल वाली तभी हमारे जो मित्र है तृणमूल कांग्रेस के सब और हम पर हंसते थे और बोलते थे अरे कैसा भाग के गए तुम्हारे एमपी मिली तुमने रोका नहीं क्या तुमने रोका क्या जब मिलते थे तो हमको बहुत मार्गदर्शन कर देते अरे कैसा हो गया इतने ढीले कैसे छोड़ दिए कैसे भाग गए तुम लोग क्या करते थे अभी मैं पूछता हूं तुम लोग क्या करते थे एक महीने में चले गए देखो ये जो सरकार है केंद्र में 12 साल से जो चल रही है उसका एक ही काम है ये उनकी खुद की व्यक्तिगत पार्टी की ताकत नहीं है ये ईडी सीबीआई की ताकत है हमारे पास आएगी सरकार, हमारे पास ईडी सीबीआई होगी, तो ये लोग रहेंगे, उनकी पार्टी रहेगी, उनकी भी पार्टी नहीं रहेंगी। हमारी पार्टी के, कांग्रेस के, एनसीपी के, तृणमूल के सभी डरपोक लोग बीजेपी में गए हैं भगोड़े, वहां से भी भागेंगे सरकार बन लेगी तो। कौन सा ऑपरेशन है लोग कर, ऑपरेशन ऐसा नहीं होता है, हमने बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन किए हैं।
3: आपको लग रहा है सभी सांसद इस वक्त शिवसेना के सब साथ में हैं आपकी जो
6: कसम तो खाई है, भगवान की कसम खाई है, साईं बाबा की कसम खाई है, बच्चों की कसम खाई है, माँ की कसम खाई है, विश्वास रखना चाहिए।
7: बिल्कुल तो कोई ठीक है सर, ठीक है,
8: मोबाइल भी चले ना दोस्त,
7: ओके सर, बिल्कुल तो कोई ठीक है सर, ठीक है,
8: मोबाइल भी चले ना दोस्त,
7: ओके सर।
1: So that's Maharashtra, which is still a developing story, but there's also Bengal. Remember, opposition parties, one after another, are facing a crisis like we've never seen before. Sitting MPs, sitting MLAs are jumping ship, rejecting the leadership, especially what has unfolded in Bengal right after their collapse or the defeat in the state assembly elections. But here's what you need to know. The reason that the 20 MPs who want to merge with the NCPI, and what is the strategy about it, is to avoid the defection punishment that could come. And it's all going by a certain strategy. I want to add here, the process is expected within the next 5 to 7 days. The Lok Sabha Secretariat is processing a petition from the 20 rebel MPs. They've already submitted a letter in person to the Lok Sabha Speaker Om Birla. Sources are indicating that Speaker's decision will be based on paragraph 4.2 of the 10th schedule. Under this provision, if a political party merges with another party, the membership of the MLA or MPs will remain protected. TMC sources, meanwhile, are saying Lok Sabha Speaker's office emailed Abhishek Banerjee on 15th June at 2 p.m. while he was being questioned by the ED and did not have access to his phone or emails. Email from the Speaker's office asked him to meet the Lok Sabha Speaker in Delhi by 4 p.m. the same day. How could that be possible? TMC sources further claiming within an hour of the email being sent, TMC MP Kirti Azad received a phone call from Speaker's office informing him about the email. So there's a list of reasons that the TMC sources are suggesting that they are alleging that what followed was not really a procedure and there was no way that the TMC leadership or TMC MPs still loyal to Mamata Banerjee could have made it to the Lok Sabha Speaker or to have a meeting to put forth their perspective as well. Here's what's happening when it comes to Bengal.
9: Let us first settle down with the block that we are trying to merge into another party. Acceptance has already come to us. They are happy to take us. We'll work together with the NDA under the leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji and Honorable Home Minister Amit Shah ji. They are looking into the affair of this merger, how to use the schemes that were not implemented in West Bengal in the last tenure. So we are looking into how to implement those central that issues in conjunction with our Honorable Chief Minister also.
10: It was discussed even in this meeting,
9: yes,
10: ma'am?
9: Yes, because there are certain schemes which were not implemented.
10: Okay.
9: And this child marriage is highest in West Bengal as per NCRB. That is also a crime.
10: Yes,
9: so these things were happening in West Bengal, which none of them took up. So we are trying to work for the betterment of the people of West Bengal.
10: Ma'am, right now,
11: स्पीकर के काम है निरपेक्ष रहना, तो मैं ये जो सुना जिस दिन ये डिसेटिस्फाइड एमपी चिट्ठी दिया उसके पहले तृणमूल कांग्रेस की ओर से चिट्ठी दिया गया था। तो मैंने ऐसा सुना कि स्पीकर ने तृणमूल कांग्रेस को भी एक चिट्ठी दिया उनसे मिलने के लिए, मिला कि नहीं मुझे पता नहीं।
12: हम लोग हर समय यह कहते हैं जो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर लोगों के लिए काम करना है, डेवलपमेंट करना है, वो डेवलपमेंट का बात किए हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर हम लोग सब मिलकर डेवलपमेंट के साथ ही रहेंगे तो बंगाल के कलकत्ता की उन्नति जरूर होगी।
1: So stay tuned because at 7 p.m. we're going to bring to you on To The Point what's unfolding in Maharashtra and also in Bengal. I'm wrapping up this bulletin, but when I return, we have news for our special viewers who are hearing impaired. After the break, thank you.
13: You are watching India Today.
14: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
15: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
16: When it comes to your favorite podcasts, missing an episode isn't an option. Luckily, TuneIn's got you covered. Start by creating a free TuneIn account and keep everything synced across your devices. Then favorite the shows you love. We'll bring new episodes right to your homepage, so they're always easy to find. And with notifications turned on, you'll get a heads up when new episodes drop. Stay in the loop effortlessly.
17: The regional war grew by the day. Today, there has been a dramatic breakthrough. A surprise announcement from U.S. President Donald Trump, claiming the war with Iran is over and declaring that a historic peace deal has finally been sealed. Iran's Supreme National Security Council has also confirmed the understanding, saying months of difficult negotiations have culminated in a memorandum to end hostilities. The formal signing is expected in Geneva, Switzerland on Friday. The agreement could reshape the geopolitical map of the region. Trump announced reopening of Strait of Hormuz and that oil will flow again. Iran, on the other hand, says the U.S. naval blockade will be lifted within 30 days, insisting Hormuz will reopen under Iranian supervision. Prime Minister Modi welcomed the understanding and said that India hopes agreement would restore stability in the region and safeguard the global trade routes. But question remains, Israel has already signaled discomfort. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu rejected the 14-clause U.S.-Iran truce, as Trump calls him a difficult guy. Tel Aviv says the deal does not bind Israel and has ruled out any withdrawal from captured territories, warning of strong retaliation to any future attack, raising fresh questions over the durability of the peace pact. For now, the guns may have fallen silent. But whether this becomes lasting peace or merely a pause in a long conflict is the question the world is watching closely. Bureau Report, India Today.
18: एक हवा के झोंके में तमाम ने सर झुका दिया और बीजेपी में चले गए। अरे तुमने हमारे विधायक को तोड़ा, बिहार में हम दोबारा जीत कर आए। मैं उत्तर प्रदेश की जनता से अपील कर रहा हूँ, बहरेच और मटेरा की जनता से अपील कर रहा हूँ, आप मजलिस का साथ दीजिए। हम मर जाना पसंद करेंगे मगर अपने ईमान और आपकी मोहब्बत का सौदा नहीं करेंगे। फिरका परस आरएसएस की ताकतों के सामने इल्जाम हम पर लगाया जाता है मगर कारनामे कोई और करता है। बताओ अखिलेश यादव, जो ममता बनर्जी के 20 एमपी चले गए, क्यों गए वो? उनको कोई कुछ नहीं बोलता। और असदुद्दीन अवैसी आपके हक के लिए, आपकी सियासी लीडरशिप के लिए आ रहा है, तो इन सबको डर लगता है। डरना पड़ेगा तुमको आप।

चढ़ावे की चोरी के बाद कितना दुर्भाग्य है कि हमारे धर्म के और मंदिर के लोगों की जांच पता है कौन करेगा? अधिकारियों को बताओ, हमारे धर्म में को आगे बढ़ाने वालों की जांच अधिकारी करेंगे? इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है सनातन धर्म के लिए? कि बताइए, प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चढ़ावे में अगर कोई बात हुई है तो कैमरा बंद करके आपस में बातचीत कर ले, और कैमरा बंद करके आंखें बंद करके जो चढ़ावा चोरी हुआ वो वापस रख दो, भगवान प्रभु श्री राम माफ कर देंगे। लेकिन बताओ, अधिकारी जांच करेंगे हमारे भगवान के पुजारियों की? ये सनातन धर्म का अपमान है, ये सनातन धर्म का अपमान है। कि बताओ, हमारे साधु संतों की इतनी पवित्र और प्रतिष्ठित जगह की जांच अधिकारी करेंगे? ये सनातन धर्म पर चलने वाले कोई स्वीकार नहीं कर सकते। वहां कैमरे बंद कर दो, लाइट बंद कर लो, प्रभु श्री राम।

0: राम के सामने अपने आप कोई चढ़ावा फिर रख जाए।
1: श्री राम जन्मभूमि के निवेदन को स्वीकार करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 लोगों के SIT का टीम गठित किया है, इसलिए हम हृदयपूर्वक धन्यवाद देते हैं और न्यास की ओर से उनको सभी रीति का सहयोग प्राप्त होगा, तो हमें विश्वास है कि न्याय बाहर आएगा, शायद कल आ जाएंगे ऐसे हमको लग रहा है।
2: Obviously, I cannot omit political stability, which you represent, Mr. Prime Minister, in India. And I congratulate you to the fact that you're the longest serving Prime Minister in India, because consecutively for 12 years in such a difficult environment, when you have so many political parties, it's such a comprehensive environment, this is like a political miracle, and I want to congratulate you to this.

0: our shakhas are on open grounds, people are daily seeing it. We have public programs, we have such a enormous outreach in this year.
1: A government school in Telangana's Nalgonda district, which had few takers till a year ago, is suddenly in much demand. The Komati Reddy Pratik Government School in Bottuguda has received nearly 4,000 applications for just 450 seats.
2: This one, rectangle. And this one also, rectangle.
1: Till last year, the school functioned without a permanent building. Today, it is a three-story building and is equipped with smart classrooms and digital laboratories.
3: पहले हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में थे सर, फिर वहाँ फीस, बुक्स, सो बहुत ज़्यादा हो जाता सर. स्कूल बना है सर ये, बहुत अच्छा बना है स्कूल. यहाँ कंप्यूटर एजुकेशन है, फिर ऐसी कैंपस है. प्राइवेट स्कूल के बराबर ये स्कूल बना है, इसलिए बोल के ये साल में ये स्कूल में एडमिशन करे.
4: प्रीवियस स्कूल विशिष्ट स्कूल इन दैट इन दिस प्राइवेट स्कूल दैट वन सो मेनी फीस आर एक्सपेक्टेड इन दैट स्कूल. वी आर एक्सपेक्टिंग इन दिस स्कूल गवर्नमेंट स्कूल सो लाइफ स्किल्स एंड एटीट्यूड एवरी गवर्नमेंट स्कूल एक्सेप्ट डिसिप्लिन ऑल्सो सो दैट इज द मेन रीजन फॉर दिस.
1: द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द स्कूल हैज स्पार्क्ड अ रश फॉर सीट्स.
5: लास्ट ईयर वी हैव द 110 स्टूडेंट्स. Out of 110 students, 33 students have gone 10th class, 85 are there last, and now 270 students are admitted here. For that, the competition is 1:10. We have the less teachers are there, and repeating 7 teachers repeating here. It is not a government school, it is like a corporate school, we are maintaining there.
1: The new school was built using funds from the Komati Reddy Pratik Foundation, an NGO set up by State Minister Komati Reddy Venkat Reddy in memory of his son Pratik. With Abdul Bashir, Bureau Report, India Today.

0: This is the sound of Jack buzz-cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's 50 bucks right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
1: Oh, ouch.
0: However you make money work, we can work with that.
2: Mobile carriers, message and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
3: Hot Mics now streaming on TuneIn, your go-to show for explosive sports showdowns, bare-knuckle politics, raw Hollywood gossip, tech power plays, and pop culture chaos. Hosted by yours truly, Billy Bush. Want to catch the latest episodes on your connected device? It's easy. One, set a reminder with your smart speaker by saying, "Remind me to listen to Hot Mics Monday through Thursday at 12 p.m. Eastern, 9 a.m. Pacific." Two, when it's time, just say, "Play Hot Mics on TuneIn." And you're in for unfiltered takes, A-list guests, and the stories everyone else is too scared to touch.
4: तुमने रोका क्या? जब मिलते थे तो हमको बहुत मार्गदर्शन कर देते थे। अरे कैसा हो गया? इतने ढीले कैसे छोड़ दिए? कैसे भाग गए? तुम लोग क्या करते थे? अभी मैं पूछता हूँ, तुम लोग क्या करते थे? एक महीने में चले गए। देखो, ये जो सरकार है केंद्र में 12 साल से जो चल रही है, उसका एक ही काम है, एक ही काम है। ये उनकी खुद की व्यक्तिगत पार्टी की ताकत नहीं है, ये ईडी सीबीआई की ताकत है। हमारे पास आएगी सरकार, हमारे पास ईडी सीबीआई होगी, तो ये लोग रहेंगे, उनकी पार्टी रहेगी? उनकी भी पार्टी नहीं रहेगी। हमारी पार्टी के, कांग्रेस के, एनसीपी के, तृणमूल के सभी डरपोक लोग बीजेपी में गए हैं, भगोड़े। वहां से भी भागेंगे सरकार बदलेगी तो? कौन सा ऑपरेशन ये लोग कर रहे? ऑपरेशन ऐसा नहीं होता है, हमने बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन किए हैं।
5: आपको लग रहा है सभी सांसद इस वक्त शिवसेना के सब साथ में हैं आपके? जो
4: कसम तो खाई है, भगवान की कसम खाई है, साईं बाबा की कसम खाई है, बच्चों की कसम खाई है, माँ की कसम खाई है, विश्वास रखना चाहिए।
6: ये बताइए कि चल क्या रहा है इस वक्त मंदिर में? बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में अचानक से ये मामला आ गया।
7: मंदिर का अचानक नहीं कुछ है, वहां से ले जाने का है। क्यों ले गए पैसा वहां से?
6: कौन ले गया?
7: जो ले गए हैं चंपत राय जी, ये उनको काम नहीं करना चाहिए था। पैसा कैसे लेकर आप चले जाओगे? वहां पर सब तय है, सिस्टम तय है।
6: सिस्टम क्या है और चंपत राय ने क्या किया है?
7: अरे भाई, कुछ ले नहीं गए, ऐसा तो था नहीं। जब हमको मालूम हुआ, सब चीजें मालूम हो गई, तो स्वाभाविक हम गुस्से में हो गए कि क्यों ले गए गहना, रुपया, क्योंकि सब चढ़ता है ना। तो एक साथ उस समय का सारी चीज ले जाना, ये ठीक नहीं है।
8: प्रदेश की भी, प्रदेश की किसी परिवार की किसी भी बेटी के खिलाफ किसी भी प्रकार की अशोभनीय और अमर्यादित टिप्पणी, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। इसे कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता और इस पर राज्य की सरकार ने FIR दर्ज करके दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश भी दे दिया है। और मेरी पार्टी से लेकर हर पार्टी को इसका पालन करना चाहिए। समाज की हर बिटिया हम सब की बिटिया है और हम सबको उसका सम्मान करना चाहिए। बेटियों को हमें किसी भी प्रकार से राजनीतिक लड़ाई झगड़े में घसीटने की आवश्यकता नहीं।
9: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
2: No ticket, no line, just showtime. Qwello Concerts is the destination for music lovers. With thousands of electrifying concerts and music documentaries. Try Qwello Concerts, that's Q-E-L-L-O, for free on Amazon Prime Video today.
3: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
4: لا يشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم.
5: A young woman pleads them to let go.
6: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر
7: غاسق إذا وقب ومن شر
6: نفاثات
7: في العقد
6: ومن شر الحاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا حسد.
5: But the men around her continue what she alleges was a forced religious conversion ritual. This viral video is now at the heart of a sensational case being investigated by Nagpur police. The survivor, a 24-year-old woman, the wife of an Indian Air Force officer, alleges that her former classmate, Ayaz Taj, first approached her under the pretext of buying a property plot. She alleges she was given an intoxicating substance, sexually assaulted, and filmed without her consent. The accused allegedly used those videos to blackmail her, repeatedly exploit her, and extort over 3 lakh rupees. The woman further alleges she was taken to a secluded location where rituals were conducted and she was told that her religious conversion into Islam had been completed. Police say the viral video submitted by the complainant is being verified as evidence. 2 accused, Ayaz Taj and Amin Sheikh, have been arrested, while a 3rd accused, Hazrat Maulana, remains absconding. Meanwhile, Vishwa Hindu Parishad called it a case of love jihad and demanded thorough investigation. As police examined the video and other evidence, the case has sparked serious questions whether multiple illicit conversion rings are getting free run across many parts of India. Bureau Report, India Today.
8: को भी लग रहा है कहने के जो स्थिति पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के साथ हुई वैसी शिवसेना के साथ
9: यूपी से हम पहले जा चुके हैं। वो जो स्थिति है पश्चिम बंगाल वाली, तभी हमारे जो मित्र है तृणमूल कांग्रेस के सब और हम पर हंसते थे और बोलते थे, अरे कैसा भाग के गए तुम्हारे एमपी मिली, तुमने रोका नहीं क्या, तुमने रोका क्या? जब मिलते थे तो हमको बहुत मार्गदर्शन करते थे, अरे कैसा हो गया, इतने ढीले कैसे छोड़ दिए, कैसे भाग गए, तुम लोग क्या करते थे? अभी मैं पूछता हूं तुम लोग क्या करते थे, एक महीने में चले गए। देखो ये जो सरकार है केंद्र में 12 साल से जो चल रही है उसका एक ही काम है, ये उनकी खुद की व्यक्तिगत पार्टी की ताकत नहीं है, ये ईडी सीबीआई की ताकत है। हमारे पास आएगी सरकार, हमारे पास ईडी सीबीआई होगी तो ये लोग रहेंगे, उनकी पार्टी रहेगी, उनकी भी पार्टी नहीं रहेंगी। हमारे पार्टी के, कांग्रेस के, एनसीपी के, तृणमूल के सभी डरपोक लोग बीजेपी में गए हैं, भगोड़े, वहां से भी भागेंगे सरकार बदलेगी तो। कौन सा ऑपरेशन ये लोग कर, ऑपरेशन ऐसा नहीं होता है, हमने बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन किए हैं।
8: आपको लग रहा है सभी सांसद इस वक्त शिवसेना के सब साथ में है आपकी जो?
9: कसम तो खाई है, भगवान की कसम खाई है, साईं बाबा की कसम खाई है, बच्चों की कसम खाई है, माँ की कसम खाई है, विश्वास रखना चाहिए।

0: उबाठा नाम की पार्टी अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। उबाठा के नेतृत्व पर उबाठा के जो एमएलएज हैं, जो एमपीज हैं, अब उनका विश्वास नहीं रहा। तो 2029 आते आते ये पार्टी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रोज उबाठा छोड़ करके उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में अविश्वास जताते हुए लोग पार्टी छोड़ के बाहर निकल रहे हैं। अब उनके जहां तक सांसदों की बात है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, उनकी पार्टी का यह अंदरूनी विषय है। उन्होंने पिछले दिनों मातोश्री में एक बैठक बुलाई थी और उद्धव ठाकरे जी जो हमेशा फेसबुक लाइव रहते हैं, पहली बार उनसे प्रेरणा लेकर के उनके सांसद ऑनलाइन लाइव हो गए और उन्होंने मीटिंग ज्वाइन नहीं
1: की। ऐसा है कि ऑपरेशन टाइगर के मामले में जो 7 सांसदों के साथ में हमारी चर्चा अंतिम क्षण में आ चुकी है, जैसा हम लोग ऑपरेशन करने किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो पहले इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और वो इन्वेस्टिगेशन सारे रिपोर्ट्स आ चुकी है। अभी केवल ये डॉक्टर का अंतिम ऑपरेशन का जो दिन होता है, ऑपरेशन की अपॉइंटमेंट दिन आना है, ऑपरेशन के दिन आ जाएगा, उस दिन ही ऑपरेशन हो जाएगा।
2: सी द कांग्रेस गवर्नमेंट इटसेल्फ इज डूइंग ए रियल एस्टेट नाउ, टेकिंग दिस 7,000 and odd acres of fertile land of the farmers, that too the costliest land, about 15 to 20 crore rupees per acre. See, this government is going to acquire that land in the name of township. It is totally a real estate business, so that our party is against to this move.

0: No drama, just the real Korean ritual. In every bottle of Aquajay, infused with Jeju-grown botanicals and powered by K-Beauty Science. Aquajay, now in India.
1: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
2: AU! सोच बदलो और बैंक भी।

0: आपको भी लग रहा है कहने के जो स्थिति पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के साथ हुई वैसी शिवसेना के साथ
1: जिससे हम पहले जा चुके हैं, वो जो स्थिति है पश्चिम बंगाल वाली, तभी हमारे जो मित्र है तृणमूल कांग्रेस के सब वह हम पर हंसते थे और बोलते थे, अरे कैसा भाग के गए तुम्हारे एमपी मिली, तुमने रोका नहीं क्या, तुमने रोका क्या? जब मिलते थे तो हमको बहुत मार्गदर्शन कर देते, अरे कैसा हो गया, इतने ढीले कैसे छोड़ दिए, कैसे भाग गए, तुम लोग क्या करते थे? अभी मैं पूछता हूं, तुम लोग क्या करते थे? एक महीने में चले गए। देखो ये जो सरकार है केंद्र में 12 साल से जो चल रही है उसका एक ही काम है, एक ही काम है। ये उनकी खुद की व्यक्तिगत पार्टी की ताकत नहीं है, ये ईडी सीबीआई की ताकत है। हमारे पास आएगी सरकार, हमारे पास ईडी सीबीआई होगी तो ये लोग रहेंगे, उनकी पार्टी रहेगी? उनकी भी पार्टी नहीं रहेंगी। हमारे पार्टी के, कांग्रेस के, एनसीपी के, तृणमूल के सभी डरपोक लोग बीजेपी में गए हैं भगोड़े, वहां से भी भागेंगे सरकार बदलेगी तो। कौन सा ऑपरेशन है लोग कर, ऑपरेशन ऐसा नहीं होता है, हमने बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन किए हैं।
0: आपको लग रहा है सभी सांसद इस वक्त शिवसेना के सब साथ में हैं आपके? जो
1: कसम तो खाई है, भगवान की कसम खाई है, साईं बाबा की कसम खाई है, बच्चों की कसम खाई है, माँ की कसम खाई है, विश्वास रखना चाहिए।

0: to 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
2: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: TuneIn has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
4: क्योंकि रोज उबाटा छोड़ करके उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में अविश्वास जताते हुए लोग पार्टी छोड़ के बाहर निकल रहे हैं। अब उनके जहां तक सांसदों की बात है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, उनकी पार्टी का यह अंदरूनी विषय है। उन्होंने पिछले दिनों मातोश्री में एक बैठक बुलाई थी और उद्धव ठाकरे जी जो हमेशा फेसबुक लाइव रहते हैं, पहली बार उनसे प्रेरणा लेकर के उनके सांसद ऑनलाइन लाइव हो गए और उन्होंने मीटिंग ज्वाइन नहीं
5: की। ऐसा है कि ऑपरेशन टाइगर के मामले में जो 7 सांसदों के साथ में हमारी चर्चा अंतिम क्षण में आ चुकी है, जैसा हम लोग ऑपरेशन करने किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो पहले इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और वो इन्वेस्टिगेशन सारे रिपोर्ट्स आ चुकी है। अभी केवल ये डॉक्टर का अंतिम ऑपरेशन का जो दिन होता है, ऑपरेशन की अपॉइंटमेंट दिन आना है, ऑपरेशन के दिन आ जाएगा, उस दिन ही ऑपरेशन हो जाएगा।